सब जस परा रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अम चिंगों नो वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शिह बाग के मुब अब्दुबाग पाप देम बन्यो कै अमल फी चितू बा इतालिया अस्त अल्लाह के बामों ने भी अस्त अल्लाह।

मन अरसलटों कलन ब्याया समन वाली वस बी वर्ट झानी सा नस मखार खन बी यन जाए या मन अमर सवील ईमान कुल्लो मो बिर अन्य सुल मुख्तार फी रुसुल